साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्खंत घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर। असंख गलबड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे। असंख निंदक सर कर है भार, नानक नीच कहै विचार। वारिया न जावा एक वार, जोत पावै साई भरी कार। तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाहा। अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण। वखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे।

तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै तंत ना अंत तिथै लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर्ज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिया करते का होए बिचारो तित कर गावहो सोहेला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरभौ का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा।

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेरे साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तने अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुवै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नारक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हरलाहा आगे बसन सोहेला औद घटे दिन सुरणारे मन गुरमल का सवारे रहाओ एहो संसार बिकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए

निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग श्री राग महला पहला, कर पहला। मोती ता मंदर उस रह, रतनी ता होहे जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चित ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपुछ देखिया, अवर नाही थाओ राओ। धरती ताही

तेरा चेतना आवै नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ सुल्तान होवा मेल लस्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आर जा पवन पीण पियाओ चंद सूरज दोए गुफैना देखा।

सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जा पद लिखे ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजिय नाउ मनिय, अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइय ता जियो केहा होए, जलिया सब सियाणपां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया डर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो पैने गल मिले है अंक सहे लिड़िया, मिलके करे कहानिया समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी, तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया, मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै, सच में सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जय उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए, गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखिए आखण तोट न होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईए मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईए दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी, सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणिए नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाई है हो सतबलिहारे जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख न उठिए पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार। तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार। लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप। तन मन गुर पै वेचिया मन दी आ सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला। मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस। तू सर्व जी

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए विनाश। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दरगह पै नाई।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुणे आवे जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना

तरोए खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पाता है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह आराम नाम रंग रत्या भार ना भर मौ तिनाह हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोबन हर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यो ढल ढुल जुम्मन हार रंग माण लै प्यारिया जां जोबन।

मैं मछली कैसे अंतलहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी, मनमुखे अंद न चेत ही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिरका महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ, गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोई जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना हो।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हो।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेणका अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले पाप त्याग। गुरपुरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुर दर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए।

जिन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी।

माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार, सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार, जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत, एक मन एक ते आईऐ मन की लहै परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराधिऐ दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद। देखै सुनै हदूर साधु काट काट ब्रह्म रविंद, अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखशिंद। श्री राग महला पंजवा, मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहि सवार। सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर राखि उर तार। मेरे मानो हर बिनया वरना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक, मात पिता सुत बंद पा कूड़े सबे साक। जिन कीता तिसै ना जाणई मनमुख।

वन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान प्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हऊ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंतन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगह पावै थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किछ सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुर होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक

सहजे शिव तीर्थया पवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइए साधु तूर लूक मावै किस्ते जां वेखे सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर ने

मेरे मन गुर जेवड़ेवर ना कोए, दूजा थाओ ना को सुजै, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड़ भागी माए। गुरदाता समर

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योतिया पार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्लै पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सच नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदा

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भावजल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोह था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखकणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सरतल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हों मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुखे आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुले भुलाई भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना प्रियंक समाए रहाओ पुली फिर दसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए तरो विशुनी क्यों मिले गर्म उठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਜਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰਨਾਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ। ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ, ਆਖਣ ਆਖੈ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀਐ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਅਹਿਟ ਤਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਸ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਕਹਿਣੈ ਆਥ ਨ ਲੱਭਈ ਸੱਚ ਟਕੈ ਪਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਤੂੰ ਸਾ ਲਹਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ

महले पहले सतारा अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटुंब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हों मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहारै जाओ। अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मछर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमाव दे, जम डंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करते लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ। विण सतगुर परतीत ना आवई, नाम ना लागा उपाओ। सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै सुमाए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्याप्त है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भक्त ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीचित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके पेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भगति उपजै सहज पैर प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सशरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मनमुख कर्म कमावणे हम मैं जलै जलाए जमन मरण ना चुकई फिर आवै जाए त्रेह गुणा में सहज ना पाई त्रै गुण परम भुलाए पढ़िए गुणिया क्या कथिए जा मुंडो कुथा जाए चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्लै पाए निर्गुण नाम निदान है सहजे सोजी होए गुणवंती सालाहया सच्चे सच्ची सोए भुलिया सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार सहजे ही सोजी पई सच्चे शब्द अपार आपे बख्श मिलाया न पूरे गुर करतार सहजे अदिष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया कायक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार पूरे शब्द सलाही है।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवे राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवे उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवे उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चित ना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना दे वै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मछ पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले है परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथिया फिरे निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सोहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे कार सियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सब सह ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करै निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटो घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत ने हुक नेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कर कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रैन कै

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निदमानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिले ओहे आपे ही आप मोए ओहो जस नानक आप सुने ओहे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दुख सब जो होया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होया कर गए लीने नानक प्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है वणजारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन भाईया हर किने ना पाया नाओ विच

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेव है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर एको करता एक एको दी बाण हर। हर एक सह दा है अमर एको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सब नहीं थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे। दस चार हट तुद साजे वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे त्यावै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा, कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रहै, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा, नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी

सोहणी पारहर छोड़ी पतार महला तीजा। शब्द रति सोहागणी सतगुर कह पाए प्यार, सदा रावे परे अपना सच्चे प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सोहागणी मेली मिलनहार पौड़ी। हर तेरी सब करे उस्त तो जिन फाथे काढ़िया, हर तुदनो करे सब नमस्कार जिन पापै ते राखिया। हर ने माणिया तू माणो हर डाडी हूं तू डाढ़िया, हर हंकारियां मार निवाए मन मुख मूड साध्या। हर भगता दे वड़ियाई गरीबा नाथिया, श्लोक महला तीजा। सतगुर कह पाने जो चले तिस वड़ियाई वड़ी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै मिट न सकै कोए। किरपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंधन हर लिवतार। माया बंधी खसम की तेने अगै कमावे कार, पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार, मन मुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरिया पौजल संसार, सब औगुण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शन हार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब के जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर तर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय जा नाही तर्म मारदा, सच्चा साहेब सच न्याओ पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़ हर भगत जन तारदा, श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा यंत्र रखा और तार, साला ही सो प्रभ सदा सदा गुर कह हित प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पए तया नाम हरे। हाँ मैं मार मिलायन गुर कह सब तरे, नानक सहि समायन हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वड़ियाई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतां नो दे आनंद थिर करी बहालियन, पापियां नो ना दे थिर रहन चुन नरक कोर चालियन। हर भगतां नो दे प्यार कर अंग निस्तारियन, श्लोक महला पहला। कबुद डूमणी कुदया कसायण, पर निंदा कट चूहड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या थी है जा चारे बैठिया नाल, सच संयम करनी कारा नावन नाव जपे ही। नानक अगे उत्तम सेई जे पापा पंद ना देही, महला पहला। क्या हंस क्या बगला जा कौ नदर करे, जो तिस पावै नानका कागो हंस करे। पौड़ी कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है, कार्ज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है, पै पंजन मेहरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है, श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार, नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार। हाँ बलिहारी तिन कहो जिन त्याया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा सतगुर मिले उल्टी पई नवनिध खर्चियो खाओ, अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज घर वसै निज थाए। अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए, नानक हर भगत तिन्ना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। पौड़ी हाँ टाडी हर प्रभ खसम का, हर कह दर आया हर अंदर सुनी पुकार। टाडी मुख लाया हर पुछिया टाडी सद कै, केते अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभु। हर नाम ते आया हर दाता हर नाम जपाया, नानक पैनाया सुध। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का, एक सवान कह कर गावना।
जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जानै जे दिंदन अवध घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड़ धार, पेखत ही जमराव हसै। ऐसा तै जग परम लाया, कैसे बूझै जा मोया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नहि चो मरनार। मैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, इन बिद पव सागर तरना। जात पावै ता लागै पाओ, परम पुलावा विचों जाए। उपजै सहज ज्ञान मत जागै, गुर प्रसाद अंतर लिव लागै। इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाणता खसमै मिलना। रहाओ दूजा श्री राग तरलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी। जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यों। पर कर जो है कपट नरा।

वन त्रिण त्रि पवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तसै अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए जिजत पाणा तित तलाए सब किश कीता तेरा होवै नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुर पूरे वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण ब्रह्मन अधारा भग जीवै गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै साध संग जन मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवै भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी खुदी मिट्टी चूका पोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना हुए कृपाल स्वामी अपना ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकरियत भारी तुमरे कर्तव तुम ही जाना हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मल सगली खोवै भेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो एह मत गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पए निहाला जियो। माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांस है सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब तरापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस दाते आई जन्म मरण पै काटे मोहा बिनसे शोक संतापे जियो। सास सास नानक साला हे सिमरत नाम काटे सफा हे पूर्ण आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावै गुण अगम्या पारे गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याईये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावै मन चिंदे से ही फल पावै सिमर साहेब सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाईऐ सब पो बिनसै हर हर त्याईऐ जिन सेव्या सो पार ग्रामी कार्ज सगले थीए जियो। आए पया तेरी सरनाई जो पावै त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रभक्ति लावो सच नानके अमृत पीए जियो। माज महला पंजवा भये कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वरसै सबनी थाई
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਜੋ ਬਾਰਕ ਮਾਤਾ ਸੁਮਾਰੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਉ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੋ ਤਿਸ ਦਾ ਧਿਆਈ ਜੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸਗਲੋ ਉਦਾਰੇ ਜੀਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸਭ ਸੋਖ ਸੰਤਾਪੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੰਤਨ ਹਰੀਆਵਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਉ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाणै जियो प्रभ मिरने की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास की ए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किशु ना जापे अपने संतां नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच तिहाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समर्थ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

आत्म कहती है जगत कसाई। निंदा कर कर बहु भार उठावै, बिन मजूरी पार पहुंचावणिया, इहो जगवाड़ी मेरा प्रमाली। सदा समाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वाह जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा। दुखिए नित फिरै बिल लांदे, बिन गुर सांत ना पावणिया। जिन कीते सोई बिद जाणै, आप करे ता हुक्म पछाणै, जिहा अंदर पाए तिहा वरतै, आपे बाहर पावणिया। तिस बाजों सच्चे मैं होर ना कोई, जिस लाए लै सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हो मैं मेरा शब्द गवाए। अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया, हां वारी जियो वारी। अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया रहाओ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा रैणी। अमृत कथा कहै सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणिया। सो किश करै जो चेतना होई, तिसदा हुक्म मेट ना सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पी आवणिया। अजब कम करते हर केरे, एहो मन पूला जांदा फेरे। अमृत बाणी सोच तलाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आपो पाए, तुद आपे परखे लोक सवाए। खरे परख खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सालाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही। तेरे भाणे विच अमृत वसै, तू भाणै अमृत पी आवणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सद

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख बन जे सदा वापारी लाहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जै के ई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने आ। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हों मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने आ। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने आ। जम जा गाती दूजे भाए कर लाए नाम पूले दे सजाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने आ। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने आ। पेयड़ पिर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया। कामन पिर राख्या कंठ लाए सबदे पिर रा वैसे सुहावने आ। आपे देवै सद बुलाए अपना नाव मन वसाए नानक नाम मिलै वडियाई अंदन सदा गुण गावने आ। माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा। हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावने आ। हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावने आ। गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चे सोभा पावने आ। रहाओ अलाख्या पेओ हर रया समाए ओ पाए न किती पाया जाए। कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावने आ। दूजे पाए पड़े नहीं बूजे त्रिबद माया कारण लूजे। त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी गुरसबदी मुक्त करावने आ। एहो मन चंचल वस ना आवै दुबदा लागै दै दिस्तावै। बिखका कीड़ा बिख मै राता बिखी माए पचावने आ। हाँ हाँ करे तै आप जनाए बहु कर्म करै कि थाए न पाए। तुते बाहर किशु ना होवै बक्से शब्द सुहावने आ। उपजै पचै हर बूजै नाही अंदन दूजै पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावने आ। पिर पर दे सिंगार बनाए मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत ना सोभा पलत ना ढोई बिरथा जन्म गवावने आ। हर का नाम किने विरलै जाता पूरे गुर कै शब्द पछाता। अंधन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावने आ। सब मैं वरतै एको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सो है कर कृपा आप मिलावने आ। माज महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावै दूजे पाए महा दुख पावै। बिख्या माते के सूजै नाही फिर जूनी आवने आ। हाँ वारी जियो वारी हों मैं मार मिलावने आ। गुर सेवा ते हर मन वसिया हर रस ऐस पियावने आ। रहाओ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणै मोहे माया। अज्ञान मती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावने आ। अकथो कथिया शब्द सुहावै गुरमती मन सचो भावै। सचो सच रवै दिन राती एहो मन सच रंगावने आ।
ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸੱਚੋ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਾਜਾ ਤਾ, ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਕੂੜ ਕਸਤ ਤਿਨਾ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਦਨ ਜਾਗੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਪੀਤਰ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜੈ ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਮੂਲੋ ਪੂਲੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਕੇ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ, ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੂਝੈ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜੈ ਹਰ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਚੁਕਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮੋ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਆਪੇ ਸੋਈ, ਤਤ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਈ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਰਸ ਚੱਕ ਸਾਧ ਪਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਚੱਕ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਉਣ ਪਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਸਰਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ, ਅਹਿਨਸ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚੈ, ਹਰ ਸਰਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਬਗ ਮੈਲਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਈ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਪਰ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਘਰ ਚਾਨਣ ਆਪ ਪਛਾਨਣਿਆ, ਆਪ ਉਹ ਪਾਏ ਤੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਜਨ ਲੇਖੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦਿਸੈ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे।

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। अपन लिया जे मिले विचड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुचिया गल पई सो जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तिण प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख आ पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागनी।

लख सिंगार बनाया कार्ज नाही केत, जित दिन देह बिन ससी तित वेला कहसन प्रेत, पकड़ चला इन दूत जम किसे ना देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत, हथ मरोड़ै तन कपे स्याहो होवा सेत, जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बोइथ प्रभ देत, से पादोए नरक ना पाईऐ गुर रखण वाला हेत, असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए, संत सहाई प्रेम के हौतन कै लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे या गाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए, असु सुखी वसंदियां।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, वाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बी श्रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

क्या पैदा होए जाम नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवाणी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

तो महल खुवाई है, सच्चा शब्द निशान ठाक ना पाई है, ससुण बुझ बखान महल बुलाई है। श्लोक महला पहला, पहरा अग्न है वह कर बादा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाग चलाई, तारता राजी अंबर तोली, पिछे टंग चढ़ाई, एवड वदा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवे मन अंदर, करी पे आख कराई, जेवड़ साहेब तेवड़ दाती, दे दे करे रजाई, नानक नदर करे जिस उपर, सच नाम वड्याई। महला दूजा, आखण आख न रजिया, सुन न रजे कन, अखी देख न रजिया, गुण गाह के कवन, भुखिया भुख ना उतरे, गली भुख ना जाए, नानक भुखा तारजे, जा गुण के गुणी समाए। पौड़ी, विण सच्चे सब कूड़, कूड़ कमाई है, विण सच्चे कूड़ यार बन चलाई है, विण सच्चे तन शार शार लाई है, विण सच्चे सब भुख जे पै जय खाई है, विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है, कूड़ा लालच लग मैल खुवाई है, सब जग ठगे ओ ठग आई है जाई है, तन मैं तृष्णा अग शब्द बुझाई है। श्लोक महला पहला, नानक गुर संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान, रस रसिया हरिया सदा, पक्के कर्म ध्यान, पत के साध खांदा लहै, दाना कै सिरदान। महला पहला, सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल, नानक कर्म होवे मुख मस्तक, लिखिया होवे लेख, आठ सठ तीर्थ गुर की चरणी, पूजे सदा वसेख, हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवे दजे नानका, तरिये कर्मी लग। पौड़ी, जीव दया मर मार न पछोताई है, झूठा है संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है, काल बुरा खै काल, सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम, परिय पाई है, गुर प्रसादी बुझ सच समाई है। श्लोक महला पहला, तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा, निम फल मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आवही, नानक कहिए किसो, हंडन करमा बाहरे। महला पहला, मत पंखेरु किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अकडाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है, साहिब लगी रीत। पौड़ी, केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना, खड़ दर्शन कह भेख किसे सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना, मने नाम बिसंख दरगे पावना, खालक कौ आदेश ढाडी गावना, नानक जुग जुग एक मन वसावना। श्लोक महला दूजा, मंत्री होए अठूं हिया, नांगी लगे जाए, अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए, हुक्म पया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यो मनमुख अड़े, डुबे हक न आए, दुहां सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यो पाए, नानक ए वै जानिए, सब कित सहर जाए। महला दूजा, नानक परखे आप कहो ता पारख जान, रोग दारू दोवे बुझे ता वैद सुजान, वाट ना करी मामला जाने मेहमान, मूल जान गल्ला करे हान लाए हान, लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान, सरसंदे आगास कहो क्यों पहुंचे बाण, अगे यो आगम है वाहे दड़ जान। पौड़ी,
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਗਾਰੀਆ, ਕਰਨ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਵਾਰੀਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਜ ਨਿਵਾਸ ਸਬਦ ਸਵਾਰੀਆ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਸੇਵੇ ਚਾਰੀਆ, ਸੋਹਨ ਖਸਮੈ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਰੀਆ, ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋ ਪਿਆਰੀਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਤ੍ਰਿਗਵਾਸ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਸਬਦ ਸਵਾਰੀ ਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਮੀਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹਿ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਪਰੇ ਕਿਸਕੋ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਤੀ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨੇਹ ਫਲੰਗ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦ ਤੇ, ਸਾਗਰੰਗ ਸੰਸਾਰਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਪੌੜੀ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਵਸਿਆ, ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਕਲਾਣ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ, ਖਸਮੋ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨੋ ਰਹੱਸਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਸੱਜਣ ਸਰਸਿਆ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨੋ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਧੰਸਿਆ, ਢਾਡੀ ਕਥਿਆ ਕਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਹਿਰਾਸ ਹਰ ਜਿਉ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖਤਿਓ ਜੰਮੇ ਖਤੇ ਕਰ ਨਿਤ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ, ਧੋਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਭ ਧੋਵਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਐ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਹੀ ਪਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਪੌੜੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖਿਆ ਲੱਖ ਸਿਰਜ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਉੱਜੜ ਭੁੱਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹੋ ਸੱਚ ਸਮਾਲਿਆ, ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਕਰਾਹੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆ, ਨੇਡਰਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ, ਨਾਵੋ ਪੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾ ਲਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਪੈ ਮਰੈ ਭੀ ਪਉ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈਵਣ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੈਵਣ ਜੇ ਮਰੈ ਮੋਹੇ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਮਹੂ ਝੂਰੀ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਰ ਖੋਹਾਏ ਪੀਐ ਮਲਵਾਣੀ ਜੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ, ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋਹ ਲੈਨ ਪੜਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਗਾਹੀ ਭੇਡਾ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਏਨ ਭਰੀਅਨ ਹੱਥ ਸਵਾਹੀ, ਮਾਊ ਪਿਉ ਕਿਰਤ ਗਵਾਏ ਨੋ ਟੱਬਰ ਰੋਵਨ ਧਾਹੀ, ਉਹਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੀਵਾ, ਮੋਏ ਕਥਾਊ ਪਾਹੀ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਦੇਨ ਨਾ ਢੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੀ, ਸਦਾ ਕੁਚੀਲ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾਹੀ, ਚੁੰਡੀ ਪਾਏ ਬਹਿਨ ਨਿਤ ਮਰਣੈ ਦਰਦੀ ਬਾਣ ਨਾ ਜਾਹੀ, ਲੱਕੀ ਕਾਸੇ ਹੱਥੀ ਫੁੰਮਣ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੀ ਜਾਹੀ, ਨਾ ਓਏ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਏ ਜੰਗਮ ਨਾ ਓਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ, ਦੈ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰੈ ਵਿਗੁੱਤੇ ਫਿੱਟਾ ਵੱਤਾ ਐ ਗੱਲਾ, ਜੀਆਂ ਮਾਰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੈ,
दानो तै स्नानो मंजे पस पई सर खुथै पानी विचों रतन्यो पन्ने मेरकिया मादानी अठ सठ तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नायन वाजा नातै पूजा नावनो सदा सुजानी मुया जीवदियां गत होवै जां सिर पाईए पानी नानक सिर खुथे सैतानी एना गल ना पाणी वुठै होया होए बिलावल जियां जुगत समाणी वुठै अनक मादक पाहा सबसै पड़दा होवै वुठै कहो चरै नित सुरही सातन दही विलोवै तित के होम जग सद पूजा पै कार्ज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नातै जित वडियाई नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चांदा नेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पत जानिए जा पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीबान होर आवन जानिया सच जे मंगै दान से तुदै जेहया सच तेरा फुरमान सबदे सोहया मन्या ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया कर्म पवै निशान न चलै चलाया तू सच्चा दातार नित देवै चढ़ै सवाया नानक मंगै दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिवती सच समेओ तिनको क्या उपदेसीय जिन गुरु नानक देओ महला पहला आप बुझाए सोई बूजै जिसे आप सुझाए ते सबके सूजै कह कह कथना माया लूजै हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्ब विचार अखर नानक अखे होया आप लह प्रात होवै जिस दात पौड़ी हौ टाडी वेकार कारे लाया राध है कै वार तुरो फुरमाया टाडी सच्चै महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया टाडी करे पसाओ शब्द बजाया नानक सच सा लाहे पूरा पाया सुध रा गौड़ी गुआरेरी महला पहला चौपदे दोपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद भउ मुच पारा वड्डा तोल मन मत हौली बोले बोल सिर तर चलिए सहिए पार नदरी करमी गुर बीचार पै बिन कोय ना लंघ सपार पै पौ राखिया पाए सवार रहाओ पै तन अगन पखै पै नाल पै पौ कड़िए शब्द सवार पै बिन काड़त कच्चन कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाओ सह स्याणप पवै ना ताओ नानक मनमुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दवाओ गौड़ी महला पहला डार कार

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओहो ना मुआ जो रया समाए। कहो नानक गुर

तू दाना बिना साचा सिर मेरा, गुरमत दे परोसै तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरै समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवारै सांझ ब्याल, एतुत मनमुख बांधे काल, अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहे सुखाली, बाजी यो संसारो लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पहारो, तू काया मैं रुल दी देखी, ज्यों तारी ऊपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया,

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जे शब्द प्यास गौड़ी गुआरे री महला तीजा एक गावत रहे मन साध ना पाए हम मैं विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मंतन राता नाम सुभावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम ना पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पर राखिया सदा और तार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वच्छल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरे री महला तीजा।

जान की उपमा तुझे वडैया रहाओ, मंदिर घर आनंद हर, हर जस मन भावै, सब रस मीठे मुख लगै, जां हर गुण गावै, हर जन परिवार सुधार है, एक ही कुली सब जगत छुड़ावै, जो किश किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू मरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाएदा, आपे वरताई, लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम, काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है, हर की वड़ियाई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, किरसानी किरसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे, मेरा पुत धी खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छिड़ाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम, रहाओ लै तुरे सौदागरी, सौदागर धावै, तन खट्टै आसा करै, माया मोह वधावै, त्यों हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया, बै हट कमाए, मो झूठ पसारा झूठका, झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया, हर खर्च लै जाए, एहो माया मोह कुटुंब है, पाए दूजै फास, गुरमति

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के किलवख गए सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए प्रभ अपने जपे दयाल पूर्ण होई सेव काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे सब जाए गुरपूरे सब भ्रम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए ओह बेला का चीत न आवे बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए हाँ बंदा हाँ साधो बैर हमरी भूम कौन काले पैर हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा करने हरना बुझे बिगाना अपनी गत में ते आपे जाना

मन मेरे गहो हर नाम का उल्लाओ, तुझे ना लगे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अग्न सीत का लास दुख, नाम जपत मन हो सुख, उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस, डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत, नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जस आप देवावे, हर हर नाम जाकै हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना, अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी, ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते, त्रिगतन त्रिगतन माया संगराते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम, ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा, ज्यो राखा खेत उपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसकै पालै कछु ना पड़ै, जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, आप बिनाहे आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच बखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सत धर्मा, सर्व निधान।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नान गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिन सो रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गवन हर कै दर्शन। हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार। एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते। दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, आगाध बोध किस्मत नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

उतना जो है माया मग्न कछु है मोह है उधर आप तरह संसार राम नाम जप एक ओंकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथा हो निदान सोई पुरख जप भगवान आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो तिस बल जाओ राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद जो प्रायो सोई अपना जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिलिया के है जो बिबर्जित तिस्यो ने है रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा कल युग में मिले आए।

मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावे बहु जोन पवाइए, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमान, कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, हाव तन मन तो पालक सच नाए, हर गुण गावे सही सुभाए, रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए, गौड़ी महला पंजवा, डर डर

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिरस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै, गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ, सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कार सो, चरण पुनीत चले हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा।

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जसपी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख सह

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन।

गई ब्याद उबरे जन मीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जाप, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवां, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी काड लेवै हथ दाना। वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे का सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जलै, हर संग राते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबै जलाओ, हर संग राते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साधका मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख ना लागे, हर संग राता अंदन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते परम पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही।

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्त्र पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित्र गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने।

वर्ण ना साकों तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हम मैं मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवनरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्स हर राया सोई होवा जो तिस पाणा या वरना किन्हीं कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे

तुम पूर्ण पुरख विधाते, राखो सरना ना दीन कहो करो हमारी गाते। तरण सागर बोध चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पाते, कर कृपा जस राखो संगे ते ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समर्था, सबके तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे। निर्गुणी आरे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा, गौड़ी महला पंजवा, सही समायो देव, जाको सदगुर पै दयाल देव रहाओ। काट जेवरी कियो दासरो, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मन प्रगटायो, अमृत नाम पियो मंत्र बतया, अन पै ठहरायो। मान आग्या सर्व सुख पाए, दुख ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर, सब आनंद रूप दिखायो। ना किश आवत ना किश जावत, सब खेल कियो हर रायो, कहो नानक अगम अगम है ठाकर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ताकी ओट गही जैरे, जिन तारे ब्रह मंड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाओ। मन की मत त्यागो हर जन, हुकम बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख ओही त्याई रे। कोट पतत उधारे खिन मैं, करते बार ना लागे रे, दीन दर दुख पंजन स्वामी, जिस पावे तिसे निवाजे रे। सबको मात पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, देन दे तोट नाही तस करते, पूर रहे उरत नागर रे। जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी, कट कट अंतर सोई रे, नानक दास ताकी सरनाई, जाते बिरथा नाम कोई रे। अरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कबू न मनो बिसारे, इहां उहां सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रतपारे रहाओ। महा कष्ट काटे खिन पीतर, रसना नाम चितारे, शीतल सांत सुख हर सरनी, जलती अग्नि निवारे। गर्भ कुंड नरक ते राखे, पव जल पारे उतारे, चरण कमल आराधित मन में, जम की त्रास बेदारे। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर, जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै, नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग पोग, हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलो है मूड नंग, चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो, सागर लहर संसा संसार, गुर बोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया, बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेट परंपो खोया, कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा,
दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुरचा कर ले लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दरसा दिया बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड़े पाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है या गै तिल नहीं मानी है अहं बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ करन करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोबन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तू ही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधिय संत संग हर मन वसै परमोह पौसा दिए रहाओ वेद प्राण सिमरत बने सब ऊच बरायत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर गोविंद लोक नहीं जन्म मरै बल बुद्ध सियान पहों मै रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुन गाइय नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई है रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्दा नेरा प्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जां कौ गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्न ते नानक कौ प्रमया कर मेरे मंत्र वसै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिय एक नाम इहां सुख आनंद कना आगे जी के संग काम रहाओ कटिय तेरा अहंग रोग तू गुर प्रसाद कर राजयोग हर रस जिन जन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बौर नकत ही ताया हर हर नाम जाको गुर दिया नानक ता का पौ गया गौड़ी महला पंजवा जां को बिसरै राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवै से गुणी गहीर रहाओ जां को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नवनिध सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किश नाही ता कै कमी करने हर पिछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जा कै गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजित बेद संतना उवाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन परन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निध मैं दितनो।

शरण परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सोलो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जो होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मन नाम लय जम बंते छूटे, सर्व सुखा सुख पाई है। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिनसे सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे

भगत वत्सल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो, क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरनी जियो, संता दासी सेवा चरनी जियो, एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागो पाई जियो, पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो, गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो, पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो, भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो, जिन ना पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत ते सब सुकरनी जियो, जन नानक सहि समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो, संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो, से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो, इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाव ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा। रहाओ राम गोबिंद जपिंदिया, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारी, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविए, भव जल पइए पार, मिल साधु संग उधार होए, मुखी उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतिया मिलिया निथावें थाओ। रहाओ होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधिया, उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरा,

सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पछाना, उस्त निंदा दो त्यागै खोजै पद।

एक बिन एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावे। भुगत मुगत का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतनो करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै, नानक मुक्ताहि तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ

मानस देहे बहुर नह पावे कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआरेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ। एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिखठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवै मन हास्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हरस्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोय न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए सिख्या दीख्या पूजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना ज्योत पई ज्योति महे समाना।

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। उस्त कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बोचते विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हरेक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम बिरुदो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पै विकार। हरक सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरदै मुरार, नजर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामै सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे।

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सहि सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुख

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरणगत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नेह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाण, साचे शब्द दर निशाण, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र पतासिया

हरनाग चले नख बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रगत बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस झांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हो मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्या त्या गै कवरे भाई मिलै सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अगन जगत पर जा रै सो उबरै गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामण हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत खोवै नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पिर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पस्म लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावै नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पुले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरे अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड़ सिर मारे, निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा, वड्डे कहावे हो मैं तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा।

गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते ओ सुख कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत् विरोले, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्रह्मणी। इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निहचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला। राम नाम

आवै सदहि निर्मल सही सुमावै। हर कथा सुनै से तनवंत दिसै जुग माही, तिनको सब निवै अंदर पूज कराही। सहजे गुण रवै साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया। नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाण, अंतर तामस आप ना पछाण। ता प्रभ पाए गुर शब्द बखाण, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए। मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे। गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे, मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सीधे। सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए। हर गुण गावे सह सुभाए, बिन गुर साचे परम पलाए। मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए। जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हमें मार सच लिवलाई। सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवै से जन निर्मल पविता। मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरा मेरे मीता। सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विचों आप गवाए। अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुर ते कवन कवन नासी दो मेरे भाई। भगती सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम वड्याई। गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण वखाणे भरम ना जाए। बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे। गुरमुख प्राणी परम गवाए, सहित तन उपजै।

मन करहला अत निर्मला मन लागी हम मैं आए परतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पाल आए ओ पाए कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगह पहनाया हर आब लया गल

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जाके सहज मन भया आनंद, ताको भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, ताके संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, ताके कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटम संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जे दुर मत हरे। रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी गा होएगा काला, त्रै गुण माया बिरस बिताला। गिरतर

तज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग न गयो सगत मूल लगे पचमोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे कने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावै अतुल सुखो नैन अलोबो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिटयो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरा मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाम तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पाओ खंडन दुख भंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुणिया रे की बेनती देहो दर्श हर दायो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वार आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाड़ता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रदान हौ को नाही मुझे समानी जो बनवंत्या चार कुलीना मन मैं होए गुमानी ज्यों उलझायो बाद बुद्ध काम रत्या नहीं बिसरानी भाई मीत बंद पसखे पाचे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बसना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो।

एकलड़ी बनमाहे, क्यों तीरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे, तन ना बाजो रह ना सके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवै प्रेम भावै सुन बेनती मेरिया, बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुरलाए, नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए, फिर छोड़ी आड़ी जियो कमन मिलावै, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै, शब्दे सुहावै ता पत पावै दीपक देह उजारै, सुन सखी सहेली सा सुहेली साचे के गुण सारै, सतगुर मेली ता प्रिरावी बिकसी अमृत बाणी, नानक सातन ता प्रिरावे जां तिसकै मन पाणी, माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे, क्यों खूले गल जे वड़ा जियो बिन गुर अत प्यारे, हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै, पुन दान्या नेक नामन क्यों अंतर मल तोवै, नाम बिना गत कोई न पावै, हठ निग्रह बेबाणै, नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाणै, तेरा नाम

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

तिन किल बिखदा हनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जमपंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है काल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरैण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मन आचिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घट घट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तुहारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन कौ एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किसै काल कंटक लोभ मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मन उदम करेहा मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया पर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है काल कलेस मिटै भ्रमनास है मन चिन्हया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड भागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह सुवामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद्ध गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साधु सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसनो आपै सुनत आप ही जासनो अपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखम आपै असूला लखी ना जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला रहाओ। सलोक निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक। पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूह पानते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा। सलोक सही साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सौ सत पुरख ते पिन ना को सो सरन परै जे पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो साध

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कै दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कै उसन सीत समसर सब ता कै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप देवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम से हो तौ एव कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे गणत

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या

होवनहार हो सदयाया, अकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाउं सब ठाऊं जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय, जास रसनो हर हर जस भनिय। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मनै प्रो। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिन सत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोमपाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

जा कहो साध कृपाल, साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो, बिन्ना मैं सुख नाहे, टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे। बार बार जाओ संत सदके, नानक पाप बिनासे कदके। सलोक ठाक न होती तिन उदार, जे होवो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही, जो सगल त्यागे कै लपटाही। ठहक ठहक माया संग मुवे, वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया, अमृत नाम तहां जी रसिया। ठाकर अपने जो जन पाया, नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं, जय डेरा तै जान। ओवा डेरा का संजम, गुर कै शब्द पछान। ओवा डेरा या डेरा को श्रम कर कालै, जाका तसु नहीं संचालै। ओवा डेरा की सोमत जान है, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया, नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए, कने न कालियो बंद। नानक उबरे जप हरी, साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ, टूंडन या मन माहे। संग तुहारे प्रभ बसै, बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग, अहंग बुद्ध बिकराल। सुख पावो सजे बसो, दर्शन देखने हाल। तेरी जामै जम मरै, गर्भ जोन दुख पाए। मोह मगन लपटत रहे, हाँ हाँ आवे जाए। टहत टहत अब टह परे, साजना सरनाए। दुखे फाहे कटिया, नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। अनाहना तू न छुटै, निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिय, आत्म जीतै कोय। होमै अनस्यो लर मरै, सो सो बादु होए। मणि मिटाई जीवत मरै, गुरपूरे उपदेश। मनुआ जीतै हर मिलै, तेसु रतन वेस। अणा को जाणै अपनो, एकै टेक आधार। रहण दिन सो सिमरत रहै, सो प्रभुरख अपार। रेण सगल या मन करै, एऊ कर्म कमाए। हुक्मै बूझै सदा सुख, नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै, प्रभु मिलावै मोहे। नानक परम पौ काटियै, चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर, गुणित गोविंद राय। फल पावै मन बांझते, तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की, जास बसै मन नाओ। गत पावै मत होए प्रगास, मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै, ग्रेजो बनै राज। संत संग सिमरत रहो, एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है, जो ताप निवारै आप। प्रतपालै नानक हमै, आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते, तृप्त ना तृष्णा लाथ। संच संच सागत मुवे, नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं, काय पसारो पाव। अनक बंच बल छल करो, माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो, थाक परो गावार। मन कै कामना आवई, अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ, संतै की सिखले हो। प्रीत करो सद एक स्यो, या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो, सब दे कै हाथ। जे जित लावो, तित लगै, नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया, सबके देवन हार। सा सा सिमरत रहै।

देंदे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहूं कहूं मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास, तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनिया, हर हर नाम श्रवण जे सुनिया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जाको, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंत ना पारा वार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिरया ओसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिये फासा, फिर फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे, श्लोक बिनौ सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

नानक सब महरवरया थान थनंतर सोए पौड़ी। हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान, होवते आए सदस दीव दुख भंजन गुर ज्ञान। हाँ छुटकै होया आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, ओर कछु न किन्हु किया, नानक सब कुछ प्राप्त हुआ। सलोक लेख कतै न छूटी खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्शल नानक पार उतार पौड़ी। लूण हरामी गुने गार बेगाना, अल्प मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए। लालच झूठ बेकार मोह ऐसम पै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए। तुद पावे ता बख्श लै खोटे संग खरे, नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलते आयो अनक जौन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुर भजन समाए। खिमा गही सत संचयो खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकर पई अंत सुख विश्राम। खेब निबाही बहुत लाभ, करे आए पतवंत, खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कर।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पौड़ी। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी हो बनहार, हे संतें कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकर हम

कविता प्रभ कौ सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ कौ सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कौ ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहि समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले आकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ या नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाभयान दूत जमदल तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंदना परै हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जेह मार्ग हो जाता केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही अनक बिगन जाए आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबो न धोवे हर का नाम कोट पाप होवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध कै संग जेह मार्ग।

जहां त्रिखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव, महा उदास्त पीसर थी वह। अग्न माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगर नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही उपयाल, मुहे व्यापै माया जाल। अवर कर तूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सै सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सिठ साजना।
सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं ले पा।

है। जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जा की टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार, रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले प्यो तारै धोए, गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कश करै।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

रखै जेह प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जेह प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर उसदा अनूप जेह प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जेह प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह है जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेख है बिस्माद जेह प्रसाद बोले अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहजे बसना जेह प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमहि सुमानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग न बींगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हवताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध कै संग बसै थान उचै साधु कै संग मैल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलुख तहर है साध कै संग नरक पर हर है
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रस है। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तर है। साध कै संग लगे पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸੋ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ

आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारा एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहि समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करना जोग ज्योतिष पावे सोई होग खिन मैं थापो थप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैरिया समाई। प्रभ पावै मानुख गत पावै प्रभ पावै ता पाथर तरावै प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै प्रभ पावै ता पत तो धारै आप करै अपन विचारै दोहां सिरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानख ते क्या होए आवै ज्योतिष पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किश ले ज्योतिष पावै सोई करे अनजानत बिखिया मैं रचै जे जानते अपने आप बचै परमे पूला दे दस्तावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेज नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बड़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावै सोई फुंथियो कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरख कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावनहार कबहू निरत करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की होतरवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा।

ज्यों प्रभु राखै तिवहिं रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिध साधक मोह ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभु भावै तिवै नचावै। ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संगत हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान। सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आप सको कर्मवंत कहावै। जन्म मरे बह जोन परमावै, तन भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा।

अवकुंभू सुख होए, तिसका नामरा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, उसदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। वड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछान, एत उत कियो सोजी जान। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तनै निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। आंदन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ही ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसै ना लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीजया, गुर प्रसाद तत सब बुझया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूक्ष्म सोई अस्थूल। न कि जन्मै न किश मरे, अपन चलता आप ही करे। आवन जावन दृष्टि अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप, अनक जुगत रच था प्यो थाप। अबनासी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदर तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का सब जब पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुभाय होवे सो होए, करने हर पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा साव तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस महे समाए, ओए सुख निदान उनहु बन आए। आप सको आप दीनो मानो, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला परपूर प्रभ, बिरथा जन नहार। जां कै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपार। सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे। तिसते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप। अबनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु ना होए। जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किश काम। गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कट सो है। धनवंता होए क्या को गर्भ, जा सब किश तिसका दिया दरब। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे। जे को होए बह दातार, तिस दिन हर जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदिर को थम है थमन, त्यो गुर का शब्द मन अस्थमन। ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्त।

आसन अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मन की तू प्री त्याग तिस्ते परे नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहिर सोजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग।

कृपा कै। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगतै सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से। ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग। नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाए तिसै सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राज जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख कट नहार, जा कै संग तरै संसार। जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत आवनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या। जा कर दै विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई। बूझै बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी। ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल दीत। ठाकर का सेवक जान है संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक प्रभ पालनहारा, सेवक की राख निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै।
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप्रतपा अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लखे, जिसका सासना काटते आप, ताको राख देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखे अवरना कोए, सर्वजियां का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत्यो मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सो आए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कह एक न जाना, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिखी उदर, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करे प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर से के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर से कौ नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर से का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर से कौ जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जानो जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस सियाणप लया ना जाई है, नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसव चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करनिया गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सतबलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनास, जा कै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन में राखे हर हरेक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, अंध भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देख नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पीओ ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पहे प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन कौ चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा कौ करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यो पावी रोग ना जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दय दिस्तावत आवे ठाए, ता कौ बिघन न लागे कोए, जा कर दे बसे हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरदेव, इउ रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यों पाव ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना, सुत मीत कुटांबियर बनता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बो डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत।

सुनत कह तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावे सजतना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहे प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुणी यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगा।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर या गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसे पूख कवन त्रिपतावे। करण करावन करण हार नानक करते का नहि सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है। जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाला शेदा भेद समा।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो, अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थिति गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय
ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁਬਿਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰਨੀਤ ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾਧ।

को खाट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भक्त सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथा अनेक उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुणअंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत।

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राख इकठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, समय पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमती, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हाथ, गुण दान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुखी उजला, नैपो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनों समत सब कोए, एक दृष्ट

तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आईंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई गुरमुखा नू फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई श्लोक महला चौथा विण नावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवै लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया श्लोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मन तन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरनागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख या गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़ी है तू करै सो सच्चे होए सी तां कायत कड़ी है श्लोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगान जन नानक कृपा धार प्रभ सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत परम की ज्यो बोलन तवै सोहन नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत परन पौड़ी तू करता आपा पुल है भुलन विच नाही तू करै सो सच्चे भला है गुरशब्द बुझाही तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छडाही श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सज्जन मिलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा सतगुर

आपे धरती साजिया नु आपे आकाश विच आपे जन तो पाया न मुख आपे दे ग्रास सवे आपे आवरदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम ते आए तू सब किलवे कटे तास पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे भावै जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ न आवै तिन के मुख दर उजले जिन हर हिरदय सच्चा भावै कूड़ यार पिशाहा सटियन कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै मोह काले कूड़ यारियां कूड़ यार कूड़ो हो जावै सलोक महला चौथा सतगुर धरती धर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पैन आए एक ना अंदर खोट नित खोट कमावै ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए जा सतगुर सराफ नदर कर देखै सुभाव गीर सब उगड़ आए ओए जेहा चितवै नित तेहा पायन ओए तेहो जेहे दईये बजाए नानक दुही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाए महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए कोई गल्लां करे कनेरियां जे घर वथ होवै साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवै हंकार ना विचों जाए हंकारियां नो दुख भुख है हथ तड़ै कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहै मुलम्मा पाज लै जाए जिस होवै पूर्व लिखिया ते सतगुर मिलै प्रभ आए जो लोहा पारस भेटिया मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नानक के प्रभ तू धनी ज्यो पावै तिवै चलाए पौड़ी जिन हर हिरदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगुण सब जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो वंदन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम रमत सो संजम हर नाम में ही तृप्तावै हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावै जो चित लाए पूजे गुरमूर्त सो मन इच्छे फल पावै जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार देवावै फिर ओह वेला उस हथ ना आवै ओह अपना बीजिया आपे खावै नरक कोर मोह कालै खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावै फिर सतगुर की सरनी पवै ता उबरै जा हर हर नाम ते आवै हर बाता आख सुनाए नानक हर करते ए वै भावै महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्नै ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझै अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै ना पाया ओह घर घर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपर आया गुरसिखा वड्याई पावै गुरपुरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਭ ਖੇਤ ਹੈ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਸਾਣੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਈ ਅਨ ਮਨਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਜਮ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸ ਨਿਤ ਕੁਰਕਦਾ ਹਰ ਕਰ ਤੈ ਮਾਰ ਕਢਾਇਆ ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੰਮੀ ਭਾਉ ਕਰ ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਇਆ ਤਿਨਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭ ਲਾਇਓਨ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਸਭ ਜਗਤ।

देखो भाई एहो अखाड़ा हरप्रीत मसके का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस न होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया भार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त माले, नाम निदान हर बन जी हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यों चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागिया सोहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्या इको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस्तिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कौ हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे। महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दिया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मिलो दया कर जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि ओर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुरसिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुखी उजले बहु सोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किनै ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से त्रि

और ओलक झोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योत पावै सो करे कराया नानक वज

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले उन तिन्ना दरगह ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह पा।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

कूड़ कमावे कूड़ उचरै, कूड़ लग्या कूड़ होए, माया मोह सब दुख है, दुख बिनसै दुख रोए। नानक धात लवै जोड़ ना आवई, जे लोचै सब कोए, जिन कौ पोतै पुन पया, तिन्ना गुर सब दी सुख होए। पौड़ी महला पंजवां। नानक विचारै संत मुन जना, चार वेद कहंदे, भगत मुखै ते बोल दे, से वचन हो मंदे, प्रगट पहारै जाप दे, सब लोग सुन दे, सुख ना पायन मुगद नर, संत नाल खहंदे। ओए लोचन ओना गुणै नो, ओए अहंकार सड़न दे, ओए विचारे क्या करै, जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसै ना संदे, वैर करन निर्वैर नाल, धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया, से फिरै पवंदे, पेड़ मुडाहू कटिया, तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवां। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया, पन्नन कर्ण समरथ, प्रभ सदा संभालै मित्र तू, दुख सबाया लथ। महला पंजवां। खुदियावंत ना जानई, लाज को लाज कबोल, नानक मांगै नाम हर, कर कृपा संजोग। पौड़ी। जेवे हे कर्म कमावंदा, तेवे हे फलते, चबे तत्ता लोहो सार, विच संगै पलते। कत गलावां चालिया, तिन दूत अमल ते, काई आसना पुनिया, नित परमल हिरते, किया ना जाने आकिरत कान, विच जोनी फिरते। सबे तेरा निखुटिया सो, हिर लिया स्तरते, विजन कले ना देवता, ता लया करते। जो जो करते अहम मेयो, चढ़ धरती पड़ते। श्लोक महला तीजा। गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हर परोए, पवित पावन परम बिचारी, जे ओस मिलै तिस पार उतारी। अंतर हर नाम बासना समाणी, हर दर सोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुनै सो होए निहाल, नानक सतगुर मिलै पाया नाम धन माल। महला चौथा। सतगुर के जी की सार ना जापै, के पूरै सतगुर भावै, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै, जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै। सतगुर आखै सो कार कमावन, सो जप कमावै, गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावै, विण सतगुर के हुक्मै जे गुर सिखा पासो कम कराया लोड़े। तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवै, गुर सतगुर अगै को जियो लाए कालै, तिस अगै गुर सिख कार कमावै, जे ठगी आवै ठगी उठ जाए, तिस नेड़ै गुर सिख मूल ना आवै, ब्रह्म विचार नानक आख सुनावै। जेवन सतगुर के मन मन्ने, कम कराए सो जंत महा दुख पावै। पौड़ी। तू सच्चा साहब अत वड्डा, तोहे जेवड़ तू वड वड्डे, जिस तू मिलै सो तुद मिलै, तू आपे बख्श लै लेखा छड्डे, जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़गड्डे। तू सच्चा साहब सच तू, सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे, ज्यो पावै त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार। महला पंजवां। राय कमाल दी मोज दी की वार, की धुन उपर गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां। हर हर नाम जो जन जपै, सो आया परवान, तिस जन कै बलिहारण, जिन जपया प्रभ निर्वाण। जन्म मरण दुख कटिया, हर भेटिया पुरख सुजान, संत संग सागर तरे, जन नानक सच्चा ताण। महला पंजवां।
ਪਲਕ

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभु कृपा कीजै हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरि अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत भई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबक माराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम।

गौड़ी कबीर जी आपे पाव के आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोग त्या

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर।

मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल पी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटै निर्जियो पूजै, अंतकाल का उपारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजै डोलै, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रहियै, बौना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोईऐ, गुरमत मनुआ असर राखो, इन बिद अमृत पियोईऐ रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निश्चल सेव कर बासा। तिन बिन बाणै तनख चढ़ाई है, इहो जग बेदया भाई, दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनुभव के देखिया, राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे।

गुर प्रसाद अगल पही अवर है ना तरथा बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फो निवरै जिन जैसा कर मान्या, अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जान्या। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है ऐसा कोई बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही जीवन मृतना दुख सुख व्यापै, सुन समाध दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फो नाही, सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गुण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे हो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध द्वय पहे जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरे टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंचपदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने, मूर्ख ए आना। कहो

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद्ध पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जां पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तबही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

साहेब रोस तरह के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है कै, देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद।

कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना परा गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोलो तय अक्षर आवा, जह बोलो तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख ना कोई, अल्लह लहो तव क्या कहो, कहो ताको पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसै सोई, काट फूटे काट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्र पत पासा, छक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जार पर जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट जो घट रहो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढ आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कतै ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंट ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक सब तन फार है।

है मन माना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यो जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जाके जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेले अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरे प्रमफास, प्रेम

अकाल मूर्त वजूनी सह भंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित पै सर्व संभाले।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए।

आए, तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वखियाण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश लीजी लीजै रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचै अरदास, पाप पुंद साखी पास, जैसा तू करै तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे पेही को पावै, तुझे आपे पावै तवै चलावै। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शहु भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। भणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सह सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंस, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्रिप्त न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम मैं माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राख है अमृत चाख है, सतगुर सेव अमृत शब्द भाख है, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग, हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठवर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ। जिन को आप लय प्रमेल, तिन को काल न सके पेल, गुरमुख निर्मल रहे प्यारे, जो जल अंब ऊपर कमल निरारे। बुरा पला कहो किसनो कहिए, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय लग

प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीखक पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दो जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीव

काया ब्रह्मा मन है धोती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती हर नामा जजा चो नाओ गुरप्रसादी ब्रह्म समाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामे पढ़ाओ नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल धोती टिक्का नाम संभाल एथे उथे निभि नाल विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल एको वेखो अवरना पाल चिन्ह तत् गगन दस द्वार हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै पाहरू राशब चोर ना लागै तिलक लाट जाने प्रवेक बुझे ब्रह्म अंतर बबेक आचारी नहीं जीतिया जाए पाठ पढ़े ने कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई ठाकर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फनगोई तिसबिन दूजा अवर ना कोई साच नाम गुर शब्द विचार गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास मैली खसम सुने सावास सच्चे तख्त।

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग न पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझ न होए, साचा रव रहे या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना। दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता।

मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे, गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हाँ पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठ कीचै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई, सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी, जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोह सिउ आगै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी, दया दिगंबर देह बिचारी, आप मरै अवरा न मारी, एक तू होर वेस बहु तेरे, नानक जाने चोज ना तेरे। आसा महला पहला, एक ना परिया गुण कर तोवा, मेरा सहु जागै हो निस्पर सोवा, इओ क्यों कंत प्यारी होवा, सहु जागै हो निस्पर सोवा रहाओ। आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होए गारी माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ। प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गया सो जो बन धन पछतानी, अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हाँ मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जर वै पतार, तव नानक कंते मन पावै, छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ। आसा महला पहला, पेव कड़ैतन खरी ए।

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाई है भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटी है लख संजी है खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राओ सच्चा नामन तांथी है जायनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिये दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेस पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहेब हौ सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर न रहे जैसे पवै उदासे मन मेरा दयाल से ती थिर न रहे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्पत्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहा।

सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे क्यामत शूछे पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या सिफती रता सद बैरागी जुवे जन्म नहार है कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धार है आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोसना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैकी दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोसना होई रहा हो सकता सीहो मारे पैवगे खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड़ियाई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाने खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाने राग आसा घर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सचै बैराग खर दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम्या पारा गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कौ गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता कौ लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुआ विचों आप गवाए सतगुर सेवे तलना तुमाए निरपव दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए भाग कोए गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम वखाने साची बाणी सूचा होए गुणते नाम प्राप्त होए गुणया मोलक पाए ना जाहे मन निर्मल साचा शब्द समाहे सेवड़ भागी जन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया

जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगह मिलै सुवाए रहाओ। शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहया भरपूर आपे नेड़ा आपे दूर आखने आखै बकै सब कोए आपे बख्श मिलाए सोए कहना कथन ना पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए आत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सवारण हार। आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया सतगुर सेवै सोजी होए दूजे पाए ना लागे कोए मूल लागे से जन परवान आंदन राम नाम जप हिरदय गुर शब्दी हर एक को जान रहाओ। डाली लागे नेफल जाए अंधी कमी अंध सजाए मनमुख अंदर ठौर ना पाए बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माहे पचाए गुर की सेवा सदा सुख पाए संत संगत मिल हर गुण गाए नामे नाम करे विचार आप तरह कुल उदरनहार। गुर की बाणी नाम वजाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल लाया दुरमत मैल शब्द उर्त गवाया। आसा महला तीजा मनमुख मरे मर मरण विगाड़े दूजे पाए आत्म संगारे मेरा मेरा कर कर विगूता आत्म ना चीने परमे विच सूता मर मोया सबदे मर जाए उस्तत निंदा गुर समझाण आई इस जुग में लाहा हर जप लै जाए रहाओ। नाम भी हुण गर्भ गल जाए बिरथा जन्म दूजे लोभाए नाम भी होनी दुख जलै सबाई सतगुर पूरै बूझ बुझाई मन चंचल बहु चोटां खाए एथों छुड़किया ठौर ना पाए गर्भ जोन विष्टा का वास तित कर मनमुख करे निवास अपने सतगुर को सदा बल जाई गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई निर्मल बाणी निज कर वासा नानक हो मैं मारे सदा उदासा। आसा महला तीजा लालै अपनी जात गवाई तन मन अर्पे सतगुर सरनाई हिरदय नाम वड्डी वड्याई सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई सो लाला जीवत मरै सोग हरख दोए सम कर जाने गुर प्रसादी शब्द उदरै रहाओ। करनी कार तुरो फरमाई बिन शब्द को थाए ना पाई करनी कीर्त

राए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जमन मरना है संसार मन मुखा चेत।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

तेरी वड़ियाई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए, नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई, आसा महला पंजवा। परदेश चाग सब देखो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले यानी, देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए, वखर काडाओ सौदा कराए रहाओ। साहे पठाया साहे पास, अमोल रतने अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौना पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, सत कै खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया, सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो, नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी, बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो, की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना, क्या जाने हो लोक जाना, रहाओ सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया परण सोबा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दू की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवे बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरे हलकाए, निंदा करे सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख ब्राह्मण

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसबदी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े नहीं।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरे पुगे भोग, आचार करे शोभा में लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

जो तू करे सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोमन हारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे

वे मोहताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर रोड़ होशै रस माता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा दियो प्राणी, तेस्यो लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्ज आप सवारिया, पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निधान।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहिथ तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक सरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो चेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर रस साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दा दासरी ता पावे सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावे नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज के

सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। आसा महला पंजवा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रभ अपनी, अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागे, चरण कमल शरण आए। संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया समिटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा भाई। रहाओ नानक दास सा शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जा के पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस, आसा महला पंजवा, जा का हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे। सतसंतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरे लेखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रह मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे। सब मद्दे रव्या मेरा ठाकर, दान दे सब जी सुमारे। एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे। जप जप होए सगल साथ जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार। क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझे मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगम अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, और रेता नाम आधार। आनंद करे सास सास सुमार, ना पोहै अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार। चरण कमल सेवी दे अंतर, गुरपूरे कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै, ना कोई संगार। जब

हर आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर शेवा महला।

जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साकै काहू बातै, आगै ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करै बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखै, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हु नाही, खसमै एवै भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखै, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरियागै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखै लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागै, ऐसी निरत नरक निवारै, नानक गुरमुख जागै। आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नौके हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा।

ओरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छोटे ओरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटे ओरी दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो सम्राथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुने ओरी कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सुवारण हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी भरम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे से धरी कान कड़न ते छूट परी मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बेनो सब स्वाद फिकरिया माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाईए पद निर्बानी आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल ना काई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास धरी तिन माया

आई सर्व सुखा बने तेरे ओले भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाओ हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पापुन विचार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई एहो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बाहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझे सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया पंडित नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन एत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहें,

प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवां, भूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवां, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो मेरे भाई, उवा की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जा कै केवल नाम, अनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जा कै एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक है नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग, गुरप्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाका हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकी पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकी गत में तो कथ ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदके सुनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी,
ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ ਹਮਾਰੇ

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जे पेंड लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

की तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाएठ गौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मूराखा गुरु नानक बहां पकड़।

संत तृप्तासे हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभु तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर, सोजन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाई है गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दोग सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर, गुर पूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे, अवर काहू पह भव ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्रह्मन वासी है रहाओ। जा का दान निखूटे नाही, भली पहां तो सब सहे समाही, जा की बख्शना मेटे कोई, मनवा साई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण, ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी।

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुंडड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मिटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराद समाले साहा साहा, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए एक साहेब सर छत दूजा नाहे कोए। ज्यो पावै त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रभ आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरिऐ, नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार, गाफल गह लिया कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया। बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है, आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाओ। भोग भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महाबिखम संसार विरलै पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ। राज माल जंजाल काज ना किते गनो, हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो। जेते माया रंग तेत पछावया, सुख का नाम निदान गुरमुख गावया। सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जी अरे। आसा महला पंजवा जिस मृत दुख जाए सह सुख पाई है, रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है। नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए, सर्व रहया भरपूर सच्चा सच सोए रहाओ। अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान योग, तिसे अराध मना विनाशै सगल रोग। राखन हारिया पार राखै अगन माहे, शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए। सुख सहज आनंद घना नानक जन तूरा, कार्ज सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपूरा। आसा महला पंजवा गोबिंद गुणी निदान गुरमुख जानिए, होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए। आवो संत मिला हर कथा कहानिया, अंदर सिमरो नाम तज लाज लुकानिया रहाओ। जप जप जीवा नाम होवे अनद कणा, मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया, तन सुहावा मुख जिन हर त्याया। जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई, नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत एकत्र होए, रस कस सब पुंच है। अमृत नाम हर हर जप है, मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो,
ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਖੀਨ ਭਏ ਸਭ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਗੈ। ਰਹਾਓ ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ ਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾ ਰਹੋ ਸਾਚਾ ਹਟ।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड़ पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब प्रम पाओ पागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनाएरी, दूजा पाव विसारी एहो तंबोला खाएरी।

खोजत खोजत खोज बिचार्यो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे भिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवां हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उड़हारी रे। आसा महला पंजवां नीकी सास संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंगिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मंतन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्यावे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुरदेव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण सरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवां डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप। त्याग सगल सियान पा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभरंग मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश ना है, ज्यों ज्यों राखै त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाए। जन्म जन्म के किलविख काटै, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगमै गोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिया, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे, अपने संतां दे हर दर्स। राग आसा महला पंजवा, कर तेरवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सतसंगे, नानक शरण आहे, आसा महला पंजवा ते पदे, ओहा प्रेम पिरी रहाओ। कनक माणक गज मोतियन लालन, नै ना नहीं राजन भागन, हुक्म ना साधन, किश किश ना चाही, चरणन शरणन संतन बंदन, सुखो सुख पाही, नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवा, गुरै दिखायो लोए ना रहाओ, इते उते कट कट कट कट, तू ही मोहेना, कारण करना तारण तरना, एक है सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना। आसा महला पंजवा, हर हर नामया मोला, ओहो सह सोहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओहो अगे अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला। आसा महला पंजवा, अपनी भगत निबाहे, ठाकर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकार्थ, हृदय चरण बसाहे, एह मुक्ता एह जुगता, राखो संत सगाहे, नाम ते आवाओ सह समावाओ, नानक हर गुण गाहे। आसा महला पंजवा, ठाकर चरण सुभावे, हर संतन पावे रहाओ, आप गवाया सेवक माया, गुण रस रस गावे, एक आसा दर्श प्यासा, आना पावे,
दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां। एक सिमर मन माही रहाओ, नाम त्याओ हृदय बसावो, तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आईऐ, सर फल पाईऐ सगले दुख जाही। जियन को दाता पुरख विदाता, नानक कटकट आही आसा महला पंजवां। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवै सर्व फल पावै, सो जन सुखिया हुआ राज कहावै, हो कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ। कहो नानक जे सतगुर भेटिया, सो जन ने चलथिया आसा महला पंजवा। कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रह रहाओ। जो प्रभ पावै जन्म ना आवै, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै, प्रभ संग मिली जय हो मन दी जय, नानक नाम मिलै अपनी दया करहो आसा महला पंजवा। मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ, सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध सरण प्रभ संग वसै।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तोह मो

गुण गोविंद गावो, आंदनो प्रभति आवो, प्रम्पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल दी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ताबो पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा आसावरी, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, आनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिया गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अन प्राण हां, रहो सर्व थान हां, लयो जम भयान हां, पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान, लैनो जिसम थान हां, पै पावक पार प्राण हां, निज कर तिसै थान हां, हर रस रसै मान हां, लाथी तिस पुखान हां, नानक सह समायो रे मना। आसावरी महला पंजवा। हर हर हर गुनीहा, जपिया सही तुनिहा, साधु रसन पनीहा, शूटन बिद सुनीहा, पाइये वड पुनी मेरे मना। रहाओ खोजे जन मुनीहा, सर्ब का प्रभ तनीहा, दुलभ कल दुनिहा, दुख बिनासनी हा, प्रपूर्ण आसनी मेरे मना। मन सो सेविये हां, अलख अपेविये हां, ता स्यों प्रीत कर हां, बिनस ना जाए मर हां, गुरते जाने हां, नानक मन मान्या मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। एका ओट गहो हां, गुर का शब्द कहो हां, आज्ञा सत सहो हां, मने निदान लहो हां, सुख समाइये मेरे मना। रहाओ जीवत जो मरे हां, दुत्तर सो तरे हां, सब की रेन होए हां, निरपो कहो सोए हां, मिटे अंदेसिया हां, संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां, तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रपाया मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। मिल हर जस गाइये हां, परम पद पाइये हां, ओ रस जो बिदे हां, ताको सगर सिद्धे हां, अन दिन जागया हां, नानक वट भागया मेरे मना। रहाओ संत भगत होइए हां, दुरमत खोइए हां, दस रेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगता शरण पर हां, जन्म ना कदे मर हां, अस्त्र से पए हां, हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां, नाम दृढ़ाए मूहा, तिस बिन नाहे कोए हां, मने अराध सोए हां, निमख ना विसरे हां, तिस बिन क्यों सरे हां, गुर को कुर्बान जाओ हां, नानक जपे नाओ मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। कारण करन तू हां, अवर ना सुजै मूहा, करै सो होइए हां, सह सुख सोइए हां,
धीरज मन पए हां, प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ। साधु संग में हां, पूर्ण संज में हां, जब ते छुटे आप हां, तब ते मिटे ताप हां, कृपा धारिया हां, पत रख बनवारिया मेरे मना, एहो सुख जानिए हां, हर करे सो मानिया हां, मंदा नाहे कोय हां, संत की रेन होए हां, आपे जिस रखे हां, हर अमृत सो चखे मेरे मना, जिसका नाहे कोय हां, तिसका प्रभु सोए हां, अंतर्गत बुझे हां, सबके सबके शिव तिस सुझे हां, पत तो उधार ले हो हां, नानक अरदास एहो मेरे मना, आसावरी महला पंजवा एक तुका, ओए परदेसिया हां, सुनत संदेसिया हां रहाओ, जा स्यो रच रहे हां, सब को तज गए हां, सुपना ज्यो पए हां, हर नाम जिन लए, हर तज अन लगे हां, जन मैं मर भगे हां, हर हर जन लहे हां, जीवत से रहे हां, जिसे कृपाल होए हां, नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा, बिरथा कहो कौन से मन की, लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की रहाओ, सुख कह हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत, नै सुधराम भजन की, मानस जन्म्या कार्थ खोवत, लाजना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना सह तन की, राग आसा महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर अवघट सरवरन आवै, बके न बोले हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत झोल महारस पावै, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धार सब ठौरे रहाओ, सच ब्रत नेम ना काल संतावै, सतगुर शब्द करो जलावै, गगन निवास समाद लगावै, पारस परस परम पद पावै, सच मन कारण तत् बिलोवै, सुबर सरमर मैलन धोवै, जै स्यो राता तै सो होवै, आपे करता करे सो होवै, गुर हिव शीतल अग्न बुझावै, सेवा सुरत पूज चढ़ावै, दर्शन आप सहज कर आवै, निर्मल बाणी नाद बजावै, ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मोरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मते कै पाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसमर जाए, अवगत नाथ ना लिखिया जाए, जल मैं उपजै जल ते दूर, जल मैं ज्योतरिया भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर, नित गुण गावा देखा दूर, अंतर बाहर अवरना को, ज्योतिष पावै सोफन होए, सुन पार्थर नानक कह विचार, निर्मल नाम मेरा आधार, आसा महला पहला, सब जप सब तप सब जतराई, उजड़ पर मैं राहे ना पाई, बिन बूझे को थाए ना पाई, नाम बिहुने माथे शाई, साच धनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मोहे बांधा बहुती आसा, गुरमति एक पय उदासा, अंतर नाम कमल परगासा, तिनको नाही जमकी त्रासा, जग त्रे जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारह मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए, माया मोह गुर सब जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए, तावत रख है ठाक रहाए, सिख संगत कर्म मिलाए, गुरबिन पूलो आवै जाए, नदर करे संजोग मिलाए,
रूड़ो कहो ना कहया जाई, या कथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सच नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, तिर भवन सूजै आप गवावै, बाणी बूझै सच समावै, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन मान्या ऐसा सुरत वखान, कथनी बदनी पड़ पड़ पार, लेखा संखा लेखा पार, ऐसा साचा तू एको जान, जमन मरना हुक्म पछाण, रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल, बंदा छूटे नाम समाल, गुर सुख दाता अवर ना पाल, हालत पालत निभि तुद नाल, शब्द मरै ता एक लिव लाए, अचर चरै ता परम चुकाए, जीवन मुक्त मन ना मसाए, गुरमुख होए ता सच समाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थापो थाप, सर्व निरंतर आपे आप, किसे ना पूछे पूछे बख्से आप, तू पुर सागर माणक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर, सुख मान पेटै गुरपीर, एको साहेब एक वजीर, जग बंदी मुक्ते हो मारी, जग्या नीवर लाया चारी, जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै हंकारी, जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए, जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझै सोए, महंगो मोल पारिया फार, अटल छल गुरमती तार, पाए मिलै पावे पैकार, नानक नीच कह बिचार, आसा महला पहला, एक मरे पंचे मिलर होवे, हमे जाए शब्द मल धोवे, समझ सूझ सहज कर होवे, बिन पूजे सगली पत खोवे, कौन मरे कौन रोवे ओही, करण कारण सब सह सिर तो ही, रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सोए, जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हम बलिहारी सदगुरु चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपो आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जग शोत, दुरमत बिन सै क्या कह रोत, जन मुवे बिन पग सरोत, मुवे कहो सच रोवे मीत, त्रैगुण रोवे नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहुसंख असंख, बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ, आप मरे मारे पी आप, आपो पाए थापो थाप, सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात, सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए, नानक सूतक जन्म मरी जय, गुर प्रसादी हर रस पी जय, राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुरमाने मनते मन तीरा, ऐसा सहो सराफी करे, साची नजर एक लिवतर रहाओ, पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार, सिमत सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए, कंचन काया ज्योता नूप, तिर पवन देवा सगर स्वरूप, मैं सोतन पल्ले साचा खूट, पंच तीन नव चार समावे, तारण गगन कल तार रहावे, बाहर जा तो उल्ट परावे, मूर्ख होए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कया बूजे, बेका माता जग सों लूजे, उत्तम संगति उत्तम होवे, गुण कौतावे अवगुण धोवे, बिन गुर सेवे सहज ना होवे, हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परखै नजर निहाल, आसा महला पहला,
ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਐਹੈ ਨਿਸ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਸੁਥਾਨ, ਤਿਨ ਪਵਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਸਾਚਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਤੇ ਸੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਭੋਗ, ਪੰਚ ਸਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਪਰ ਜੁਗਨ ਬੁੱਢੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਲੈ ਸਨਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਗਲ ਫਾਹੀ ਬੌਰਾ ਬੌਰਾਨਾ, ਬੂੜਤ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਤਉ ਡਰ ਭਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇਵਟ ਭਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਆਸਾ

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाण साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख महला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास केले वेख दो काटे हर नाम परगास। कर बिचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेल। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख। दर कर महली हर पत रख। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो। आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा। जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला। गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता। तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै। देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मनमाही तुम संसार अवर को नाही। जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुख हर गुर ज्ञान। ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जान। दुख मिटे सत शब्द पछान। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार।
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पुत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन शब्दा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेद बाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शुहारे खांदियां, मान से जड़िया, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूतां नूं फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमासह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण ना मिले खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सो थीए, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मैला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हर मां, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी, आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है, दुख सुख तेरा पाना होवै, किसथे जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है।

ओहो ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना ता नींद ना होई। जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, ता तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो, मत पछो तावो। औगुण छोड़ो गुण करहो, ऐसे तत्परावो। धर्म भूम सत बीज कर, वैसी किरस कमावो। तावा पारी जानियो लाह ले जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बुझे बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाड़ चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूंडिया को निमी मेंडा, जे तुद पावे साहेबा तू मैं हूं तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हिको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना, अंतर वस्त ना जाननी कट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा। आप नचीने तामसी कहे पय उदासा, एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावै। बिन गुर शब्द ना छूट ही प्रम आवै जावै। एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे, नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाणे, नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मने समाए ले, पहो जल सज तरना या जुगा दयाल। तू ठाकर तेरी सरना, तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाए। गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी यार सिंह बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहे मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई, अहनस नाम सलाही है सदगुर सरनाई। मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चलन हार वाट वटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। ममता मोह विसरजे अपने कर आया रहाओ। सच मिले सचियार कूड़ ना पाई है, सचे सोच तलाए बहुन ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं। रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं, हुक्मी वजो लिखाए आया जानिए। लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है, हुक्मी पैंदा जाए दरगह पानी है। हुक्मे ही सरवार बंदर बाणी है, लाहा सच न्याओ मन वसाई है। लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है। ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहेब हृदय वसाए न पछोता वही। गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवर ना कोए नजर निहाली है। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरी आवला। सच टिके कर आए शब्दो तावला। जै देखा तै सोए अवर ना जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए। रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई, चलै सदर जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसै,
ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ।

राम नाम इस जुग मैं तुल्हा जम काल लेण ना आवै। नानक गुरमुख राम पिछाता कर कृपा आप मिलावै। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मिलाए। दीनानाथ जिया का दाता पूरे गुरते पाए। गुरु सिख सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए। राम नाम मंत हिरदय देवै नानक मिलन सुभाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा संत महला चौथा कर दूजा। हर हर करता दुख विनाशन पदत पावन हर नाम जियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हरि उत्तम हर हर काम जियो। हरि उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस्थिर होवै। जन्म मरण दोवै दुख मेटे सहज ही सुख सोवै। हर हर कृपा तारो ठा करो हर जपिए आत्म राम जियो। हर हर करता दुख विनाशन पतत पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल जग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया। सतगुर ज्ञान बलिया कटचन अज्ञान अंधेर गवाया। हर हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कल जग उत्तम हर जपिया सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई भ्रम चूका आवन जान जियो। आवन जाना भ्रम पौ पागा हर हर हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया तिन सफल जन्म प्रवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पर निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महानिर्योग वडभागी हर रस पाया। से तन वडे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधु मन चूका सोग विजोग जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो। आसा महला चौथा सतयुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावै परम सुख पावै हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर ना कोई। हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई हर दरगह पावै मान जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोध निरपतावै लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना हो मैं हंकार वधाया। हर हर कृपा तारी मेरे ठाकुर बिख गुरमत हर नाम लै जाए जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परम आया हर गोपी काने उपाय जियो। तप तापन तापै जग पुन आरंभै अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टकै टकाए जियो। महायुद्ध जोध बहु कीने विच होमै पचै पचाए जियो। दीन दयाल गुरसाध मिलाया मिल सतगुर मल लै जाए जियो। जुग द्वापर आया परम परम आया हर गोपी कानो पाए जियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टकै टकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीर्त हर सांध पाए जियो। हर कीर्त रोते

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नू कर प्रगटिया सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मुआ, हों में दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सच्यार कूड़ियार, हों विच पापुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरियै हों विच धोवै, हों में जाति जन सीखोवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों में छाया, हों मैं कर कर जंतो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा। हों मैं यहा जात है, हों मैं कर्म कमाहे, हों मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हों मैं कितों उपजै, कित संजम एह जाए।

देखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कंडीय जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

पहर चोलना गधा नाचै, पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए, किने बुजन हारे खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै, कीस गलौरे लियावै, कर कर मुसरी मंगल गावै। कछुआ शंख बजावै, बंस को पूत बियाहन चलिया। सोए ने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो, कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पे लोरो, लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी, एको जिसे द्वारा। नवे खंड की प्रथमी मांगे, सो जोगी जगसारा।

दो तो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तो के सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तत न जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोवना मन का बिचारा गुरप्रसाद पावे अमृत धारा कहो कबीर नजर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आसा बाती सुकी तेल लिखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता बुझ गई अगन नानक से धुआं रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब भूल बिगारे अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरे गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाही परम पद दूरे आसा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राख स्थेते रा मैया हूं बारक तेरा काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करताया ता पी चीत ना राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी।

कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन कौ पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालनी है ओ सतगुर जागता है दे रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ, तीन देव प्रतख तोरै करै किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तौ गण नहारे खाओ पात पहत अर लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछ तप ना कियो तीस बरस कछ देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तब रे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछु लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर ली

ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसो जाना, कह कबीर मोए ब्याई चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ, किन बिद रहन रहो रे, सेजै रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सो कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा, जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत, तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसरनै नारायण, हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे, तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं कासीक जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोर ध्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै, पास ना देख आग, काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संगार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

ठाकर कौ न वेद करो, पहले दूध बिटारियो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहा करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर रंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांडै। काहे कौ की जय ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जानै, ऐसे ही ठग दियो बखानै। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी, रामा भगतै चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना, झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुर उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोखया साध जा मैं ताकी केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाय उपाए। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणै जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पए है, गंध सुगंध निवासा।

छूट बो कमन गोनो आसा। हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागरो, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध पी आया, तव जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ध्यान मान मन एक मए। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रपहचानिया। धन है तन पाया तरणी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास टुवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जाटरो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, बिबे ना जान सकोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरी जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन धन जिने दी माओ आए सफल से

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यो बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारै काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसे कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन में सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सतबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी